जन्म मरण दुख जाए वाहिगुरु जी, सोरठ महला पंजवा, गोरपुरा पेट्यो वडभागी, मन पया परगासा।

संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोड़ भाग्य पाए कोड़ जन्म

आख मृग धी समझ शिकारी जब सी बाण चलाया जा लगा सी कृष्ण साहबनो बचन गुरा तद पाया जा लगा सी कृष्ण साहब।

चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम लगा जम रजाय कर पहका प्रभ जी तो मेरु सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण ब्रख बजाता रहा नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेवना बिरती जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूर्ण होई आसो बिलावल महला पंजवा ताती वाह न लग गई पहाड़ बम सुरनाई

अगर एक जवान जवानी च उलझिया पे है ते कितना ही पाठ करदा होवे कितना सत्संग करदा होवे अजे ध्यान अगे नहीं चलिया ए भी अर्ज कर दे अजे सुरत अगे नहीं गई अगांख उतरांग पिछा फेर ना मोड़ा नानक सिंह अपराध अकाल मिलदा तो दवे कट्ठे मिलदे जिस दी दृष्टि पहले काल ते पहुंच गई बड़ा महान मनुख है। मनुख अपने विच जन्म नु वेखदा है, जीवन नु वेखदा है, मरण नु नहीं। ये भी मैं कर दे। पंजाब दा एक छोटा जिहा कस्बा गुनियाना मंडी बठिंडे दे कोल भादरों दी संगरांद सी। प्रबंधकों ने मैनू कह दिता ज्ञानी जी अज बादरों के सम्राण की कथा कर दो हफ्ता मैं रहना सिमक ठीक है। तो उस संग्राम की कथा दे एक पंक्ति है बादरों के महीने भादों का मतलब है भादो छिठे पै गए पानी दे ठंड हो गए बरसात हो जाती है तो अपने कला गई गर्म दो बार बादोए हर महीने का नाम उसके स्वाद के मुताबिक रखा गया सी। बारह महीने के नाम बिक्री समत के मुताबिक बादोए हुणे ठंड हुणे गर्मी हुणे ठंड बादलों की छोटी छोटी बारिश होंदी रहिंदी है पांच मिनट हो गई दो मिनट हो गई फिर दोपने कराई गर्मी हुणे ठंड हुणे गर्मी बादोए। कई मनुख भी बादलों की तरह आउंदे ने गुरुद्वारे बैठे ने बिल्कुल ठंडे शांत कर गए बढ़तू पा दिता है उबल गए तप गए हुणे बड़े आनंदमय बैठे सन हुणे चिंता तुर हो गए हुणे बड़ा शांतमय बैठा सी हुणे क्रोधी हो गया पा दोए हुणे ते बड़ी परोपकार दी अंदर बिरतियां कंपियां कर दियां सन हुण दुराचार हुणे ते बड़ा मिठा बोल रहा सी हुण बड़ा कुरख ते कौला बहुते मनुख बहुती मनुखता बादलों की तरह दो बार है। एक घंटे की कथा गालबन मैं 20 मिनट से बाकी पंक्तियां ते लाए 40 मिनट एक पंक्ति ते लाए वो पंक्ति है हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से आखरी प्राण आयुर्वेद के मुताबिक धर्म ग्रंथा के मुताबिक मनुख की नाभी दे आखरी प्राण नाभी नु गंड भी खुल कहिंदे ने आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ये गंड दो हालतां दे खुलदी है एक मौत दे समय काल दे समय एक दृष्टि जद अकाल ते पहुंच जाए उस वक्त खुलती है। काल आ गए ते दृष्टि भी काल ते नहीं सी काल ने गंड खोल दिती मौत ने गंड खोल दिती आज काल खुले तेरी गांठड़ी। जैसे नाभी खुलती है ते आखरी प्राण निकलदा है तो शरीर दी जो हालत आउंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखदे ने हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से अंज मुठियां बंद आंदियां दंदियां वजदियां शरीर ते कंबड़ी छिड़ जांदी है हिटकी आउंदी है स्याणे अंदाजा ला लैंदे ने गंड खुल गई नाभी खुल गई। एक मौत दी चोट नाल काल दी चोट नाल ये गंड खुलदी है एक अकाल दी चोट नाल खुलदी है। काल दी चोट नाल ये जद गंड खुलदी है शरीर दी मौत हो जाती है तन मर जाता है मन सूक्ष्म शरीर दूजे शरीर दी यात्रा दे चला जाता है किसी दूजे शरीर दे गर्भ दे प्रवेश कर जाता है। जे मौत हर समय

0: वेदं परब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने फिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान होमे एहा जात है होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर फिर जौने पावे। होमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हों का अहंकार। मूल रूप ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वपन दे आधार ते खड़ा होंदा है और शक्ति सता ताकत इसके आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभता कै मद में अहनिश रहे दीवाना दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जोबन की मस्ती रिच धन की मस्ती रिच और सता की मस्ती रिच धन जेब रिच होवे या मन की सोचनी रिच होवे जोबन वंत होवे या जोबन की चाह मन बिच होवे सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है सता का चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन धन जेब देच है धन घर देच है या धन सोचां देच है विचारां देच है मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिश रहे दीवाना दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे अपने आप नूं महान समझदा है उच्चा समझदा है सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त जिस भी महफिल विच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद उस महफिल विच तू अपने आप नूं आखे मैं वड्डा मैं वड्डा मैं महान हाँ जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल मनुख दा अज्ञान और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है आलम होया है विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है ओ अमल देच नहीं और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहु कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इत सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन, हम बड़ कव मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करम, इक ना नाद ना बेद इकद नू न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध अक्कल सिर अक्षर का भयो न लहन, अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा, और अहंकारी दिया अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी करदी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा। अहंकारी चाहता है सारिया दगाह मेरे ते आन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे। तू है कि हड्डियां हड्डियां दे ते चढ़े होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी। और किया तू हड्डियां दा मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान और खलड़ी दा मान, इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने हैं, कर्पूर बहुत सुगंधा परश मानक देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया फुल्ला जैसिया पवित्र वस्तुआ मनुखी तन नाल छूंदे हां स्पर्श करदे हां मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंड मांस खलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे जा सब किश तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होंगे है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता इसका अहंकार अगह चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लिए बनाई दा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो माण मिलता है, वो माण इसके अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, हंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाथ कृष्ण ने मैं परमात्मा, कौन आउंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं आ खुदा, कौन आउंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है और हर एक का मान मैं हो जावा, मेरे से मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, कि तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौमें नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही। एक आलम का कहना है, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद, ये किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं, ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही होंदे हैं। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहिंदे गरूर का सर नीचा, आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

करते ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतनी जबान ते आ जांदा है ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गया है। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत आंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दी है ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मनी बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते हैं

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नु जड़ चेतन सबनु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारियां नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी धंग दसती है एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लेंदा है कि एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया है दुष्टां नू भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सब को उम्मीद हम आपन की ना। पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जी अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रकट होता है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलता है और जैसे निरंकार प्रगट होता है जन्म मरण मिट जाता है। सदा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है। असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर वो राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा ये नजराना है ये भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन का दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल संत दी
ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारिया की निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारिया दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गई ने, अज ते मेरे मित्र ते। चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत आंदा, सारे इसनों पे वेखते ने। खैर जिस घर में जाना गए, आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछा उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने हुआ है, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने, पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने? दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपेश्वर ने, कपीश्वर ने, पर इजड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे। कोई इस तरह तारुफ कराई रहा है? खैर माफी मंगण लग पाया, कहन लगा नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए। दूसरे घर वालों की भी निगाह इस साधु पे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वालों ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले की गल, एक चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे उची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखानू प्रभावित कर रहे हैं।

नर नारी बच्चे सब प्रभावित, इसे साधु न देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हूं तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गए इन्हों कपड़ों की गल, इस चोले की मैं इसकी गल नहीं करने, ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी, ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते हैं। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने अगर गुणवान है, मां बाप नु पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इना दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी होंदी है, रब नु भी पिछे सुटीए, परमात्मा नु भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन होंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नूं भी नहीं मन सकता, अहंकार जीवदा है मैं आश्रित, तू तो बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नूं अगे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं, इसे आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है। फखर

के गर्दन पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वट देता, गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

आंद्रा रह गई, सुरद दिया गई, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गई कम विच वर्दिया, केवल आंद्रा बच गई। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज दे धुनकी दे और धुनकी जी तंग लाई जाती है वो तो बकरे की आंत आती है अंदर आती है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए ये आंदरा ही रह गई सन।

अदाफ से धुन की बनाने के लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाली रूपिंजी जांदी है। जरब

0: उसे एक तो ही सारी अनेकता ने जन्म लिया। अनेकता इंज है जिवें सागर एक है ते लहरां अनेक ने, सूरज एक है किरणा अनेक ने, परमात्मा एक है संसार ते अनेक ने, जीव जंतु ते अनेक ने। इस सारी अनेकता दा उस एक नाल संबंध जुड़े होया है। इस वास्ते सारियां ही लहरां भरा भरा ने, पहने भरा ने, सारे एक सागर दे च ने। रब नाल जुड़िया होया मनुख सारे संसार दे नाल भाईचारा बनांदा है। मैं फिर लफ्ज़ दोहरावां, जेड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल दूर करदे ने, ओ विचार मनुख नूं परमात्मा तों वी दूर करनगे। जेड़े विचार बंदे नूं बंदे दे नेड़े नहीं आण देंदे, ए विचार बंदे नूं रब दे नेड़े वी नहीं जाण देणगे, दूर रहेगा। हकीकत है, सच्चाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल ए, सबको उम्मीद हम आपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। करम उन्हां दा ए, हरि मंदर साहब दी रचना सरोवर दिच कीती। सरोवर गुरु रामदास जी ने बनाया है। अमृतसर वसाण दी ते सरोवर नूं बनाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी दी। कार्य आरंभ कीता गुरु रामदास जी ने। सरोवर विच हरिमंदर बनाया गुरु अर्जन देव जी ने। हिफाजत दा सारा इंतजाम कीता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, अकाल तख्त बना के। एक शहर विच गुरु नानक दे इतने स्वरूपां दी महिमा है, मेहनत है, ताही उसनों सिखी दा केंद्र गिणदे ने। लेकिन गजब दी गल, ऐसे हरिमंदर दी नहीं गुरु अर्जन देव जी मियां मीर तो रखवांदे ने। और मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी दे कदमां ते रखदा, बस थोड़ा जिहा विखाद इत्थों ही शुरू हो गया, इत्थों ही शुरू हो गया। सता सत नाल टकरा गई। दो ताकतां होंदियां ने, एक बाहर दी एक अंदर दी। बाहर दी ताकत नूं कहिंदे ने सता, अंदर दी शक्ति नूं कहिंदे ने सत। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दी कोशिश सी कि सता सतवादी दे हाथ च होवे। होई है पर बहुत थोड़े, कदी कदाई राजा जनक। उह सतवादी भी सी, सताधारी भी सी, उह संत भी सी ते राजा भी सी। राम नूं लै लईए, वक्त दे अवतारी पुरुष ने, हिरदा संत वरगा है, पर राजे ने हकूमत है। कृष्ण अवतार है, संत है, पर राजा है द्वारका दा, गुजरात दे च छोटा जिहा इलाका द्वारका। ये द्वारका दे राजा सन, नाल छोटे जिहा कुछ चार पांच या दस वी पिंड आउणे ने द्वारका। ये उत्थों दे महाराजा सन, राजनीति चलांदे सन। बाहर दी सता भी कोल सी, अंदर दा सत भी कोल सी। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नारा लाया, अगर सता सतवादी दे हाथ च नहीं होवेगी तो सता जुलम करेगी। सताधारी अपने पैरां थले मजलूमां नूं रौंदेगा, लिताड़ेगा। सता सतवादी दे हाथ च होवे, संत ही सिपाही होवे, सिपाही संत होवे, वो अंदरों अत्यंत कोमल होवे ताकि इंसाफ कर सके, वो अंदरों अत्यंत मिठास नाल भरिया होवे ताकि उहदे अंदर वितकरे ना होन। सता सत नाल टकरा गई और आद काल तो टकरांदी रही। मिस्र दी सता मंसूर नाल टकरा गई सी। इतना वड्डा फकीर विचारा सोली ते चढ़े। सरमद सूफी संत है, दिल्ली दियां गलियां विच नगन घुमदा सी। इनूं पकड़ के औरंगजेब दे दरबार विच पेश कीता गया, नंगा क्यों घुमदा है? भावें उसने सिद्धा ही कह दिता सी औरंगजेब नूं, तू दस मैं केड़ी चीज नूं ढकां, तैनूं मेरे विच क्रोध दिखाई देंदा है, लोभ दिखाई देंदा है, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ, ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੀ ਨਗਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੰਗਾ। ਪੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਕਿਰਾਂ ਐਬੇ ਦੀਦ, ਬੇਅਬਾਂ ਰਾਹ ਲਿਬਾਸ ਉਰਿਆਨੀ ਦਾਦ। ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਿੱਚ ਬਟੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਹਾਂ ਪਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਨਗਨ ਫਕੀਰ, ਨੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਸਰਮਦ, ਉਹ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਫਕੀਰ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਧੋ ਪਈ, ਖਿੱਚ ਪਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੁੰਨ ਤੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਖੂਨ ਖਾਰ ਜਿਹਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਲਿਬਾਸ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਮਸਤੀ ਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂ ਦਰਬਾਨਾ ਬਾਇਤ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸੁਰਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਾਰ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਦਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਂ ਦਰਬਾਨ ਆਵਾਇਦ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬਬਾਇਦ ਤਾਂ ਸਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਆਇਦ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 1947 ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਹਿੰਦ ਕੇ ਉਲਮਾ ਵ ਉਕਰਾਮ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ। हिंद के उलमा व अकराम उदे सरमद बारे दो पंक्तियां में पढ़ के बड़ा हैरान होया। वो कहिंदा ऐ औरंगजेब, हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबले माफ है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की लेखनी है। हो सकता है खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी फकीर का कत्ल नाकाबले माफ है। मुसलमान सी ये सरमद, नमाज पढ़दा सी, अल्लाह हो जपदा सी, कुरान दी आयतां वजद विच पढ़दा सी, कपड़े नहीं पहनदा सी, और बेपरवाह सी। बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी, फकीर दा सुभा ही होंदा है बेपरवाह। जो बेपरवाह नहीं मुथाज है, मुथाज मनुख संत नहीं होंदा, बेपरवाह होंदा है। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਾਇਸ ਬਣੀ। ਆਪ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਈ 2.5 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਤਨੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ मुस्लिम फकीर भटक के थोड़े को लाम देने मनाई करो। साईं मियां मीर जैसे कवि, जमाल हुसैन जैसे, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सतगुर खामोश रहे, कहने लगे एक भी ये बोल मनन वाला नहीं है। साढ़े को सोना बथेरा है, पर धर्म मंदिरां दी तामीर वास्ते, गरीबां दी उसारी वास्ते, धर्म प्रचार वास्ते तेरे खजाना भरण वास्ते ने सिद्ध। ये बेपरवाही शहादत दा कारण बने। शहादत थोड़ा अरबी दा लफ्ज है, सच दी गवाही देनी, शहादत गवाही। सच दे पक्ष च कोई खड़ा होवे ते मसला जानदा होवे। दानी ते बहुत ने, कोई धन दा दान कर लेगा, कोई अन्न दा दान कर लेगा, कोई कपड़े दान दे देवेगा, कोई जमीन हो जायदाद सच दी खातर, गुरु दी खातर, पर कोई अपनी जान कुर्बान करे सच दी खातर, सच दे पक्ष च खड़ा हो जाए। इस वास्ते रूहे जमीन ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत महान शहादत है। सच दे पक्ष दे च खड़े हो गए ना, जान भी जांदी है ते जावे। असी जान निशावर करदे हां। इस वास्ते भारत दे सिख जगत शहीदां दा सरताज कहिंदी है। इस शहीदां दे सरताज ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। आप कहिंदे ने मैं सारियां नूं मित्र बना लिया, कोई मैनूं दुश्मन समझदा ते समझे, सब मेरे मित्र ने। सारा जहान मेरा अपना है, सबको अमीत हम अपने कीना, हम सब ना के साजन दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जिथे हरिमंदर साहब दी आपने तामीर कराई, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी संपादना भी उन्होंने की थी। और इस तो इलावा जिड़ा महान कम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा, जगह जगह धर्मशाले बनाने, कथा कीर्तन दे प्रवाह चलाने। भाई गुरदास नु तदे ही कहना पिया, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। हर घर गुरुद्वारा बने, असी ते पिट उठदे हां कि दो गुरुद्वारे तीन गुरुद्वारे भी बन जांदे दिल तंग हो जांदा है। टकराओ, लड़ो, झगड़ो, बंदे ते बंदे नाल झगड़दे ने, गुरुद्वारे भी गुरुद्वारे नाल झगड़दे ने। घर घर अंदर धर्मशाल, हर घर गुरुद्वारा होवे, हर घर धर्मशाल होवे। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। इतनी मैं अर्ज करदे हां, तंग दिल मनुख मनुख ते की ओ कुछ भी नहीं है, उन्हों सिख कहना ते बनदा ही नहीं। तंग दिल मनुख सिख नहीं हो सकता। सिख ते इतना विशाल होवे, मुरली दी तान भी गूंजे, मस्जिद दी अजान भी गूंजे, पर सिख इतना तंग दिल होवे ये बाणे भी ना बर्दाश्त कर सके, इतनी तंग दिली आ जाए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के हिरदे नू वेखना पएगा, इतना विशाल जिगड़ा महान मंदिर बनाना है, नहीं एक मुसलमान रखे पत्थर, मुसलमान रखे मियां मीर ने पत्थर रखे, ये नहीं सोचा सिख रखे। जिड़ा वाकई सिख धर्म नू मनदा है, पूर्ण तौर ते मनदा है, ते जिसका नाम भी उस ढंग दा होवे ओ पत्थर रखे, नहीं मियां मीर उस तो नहीं पत्थर रखवाया। दरबार साहब दास कोई गालबन 20-25 दिन हर साल कथा करता है, गुरु रामदास जी महाराज के गुरुपुरब तो लेके दिवाली तक 40-42 साल मेरा कदी नागा नहीं पाया, मैं हर साल उत्थे ही हुंना। साईं मियां मीर दी अंश चो 4-5 मुसलमान कश्मीर तो आउंदे ने, हर साल मिलदे ने, मैनू मिलदे ने, और आके कहंदे ने मस्कीन जी सानू माण है, असीं उस मंदिर दे पुजारियां ते मत्था टेकण वास्ते आया जिस दी बुनियाद साडे बुजुर्गां ने रखी सी, साईं मियां मीर ने रखी सी। माण करदे ने, वो माण करदे ने, है ना मुसलमान, दाड़ियां रखी हुई, नमाज पढ़ते हैं। और गुरु रामदास जी महाराज के पूर्व के दिन आते हैं, उन्होंने दिन आते हैं अक्तूबर के महीने, वह भी आते हैं मत्था टेकते हैं। तो रूहे जमीन ते सांझी वालता का इस तरह का केंद्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया, आपदी इतिहास तो आपदे बोलों तो शिक्षा की मिलती है। वह महान है मनुख जो सच दी खातर कुर्बानी देवे, उसका धन महान है जो सच वासे धन खर्च करे, धन खर्च करता है। लेकिन वो सब तो सिरमौर है जो सच दी खातर अपनी जान कुर्बान करता है, जान निछावर करता है। तुसी शहादत दिहाड़ा मना रहे हो, कुछ ना कुछ सच दे मार्ग ते कुर्बान करना ही पैंदा, कुर्बान किते बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होंदा। और हकीकत है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, सच दी नहीं आउंदी। दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, वक्ती तौर ते जित आउंदी है, वक्ती तौर ते झूठी कह कई जित गई। 14 साल दा राम नू बनवास, सिंघासन राज तिलक मेरे बच्चे नू भरत नू, जित ते हो गई वक्ती तौर ते, 14 साल लई जाना पिया। वक्ती तौर ते ते कंस दी जित है, उन्हें देवकी ते बासदेव नू जेल दे छपाया है, 6 बच्चे देवकी दे मार दिते ने उसने, 7वें कृष्ण दा जन्म होया है। राज घराने दा ए बच्चा, फिर गुजर इसनू पाल दे ने, जसोदा पाल दिए ग्वालन सी, नंद बाबा पाल दे ग्वाला सी, मां बाप ते देवकी ते बासदेव ने, पर नकली मां बाप कोल पलदा पिया। राजघराने दा ए बच्चा वड्डा होके गवां चारदा है, वक्ती तौर ते ते झूठ दी जित आउंदी है। वक्ती तौर ते जे देखिए सिंघासन ते बैठा है सूबा सरहंद, दीवारां दे चिणे जा रहे ने मासूम लाडले, वक्ती तौर ते ते झूठ दी जित आउंदी है। ये भी मैरज करते हैं, सिंघासन ते बैठा है वक्त दा शहनशाह, पर दिल्ली दे चांदनी चौंक दे कतल हो रहा है, कोई फकीर किसी दा शीस धड़ तो अलग किया जा रहा है। वक्ती तौर ते जित झूठ दी आउंदी है, सच सोली ते टंगे होया ईसा, झूठ सिंघासन ते बैठा है प्रमाण पिया करदा है। वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। अज सारे जहान विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी जय जयकार है, पर झूठ दी मजार ते ते कोई दीवा जलाण वाला भी नहीं। साहिब रहमत करन पुरब मनांदे होया सच दे धारनी बणिए, और महान संदेश गुरु अर्जन देव जी दा पराई तात हिरदे च नहीं रखने, दूसरे दा बुरा भी नहीं मंगना। फिर गुरु अर्जन देव जी दा संदेश जेड़े विचार ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੇ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਝ, ਬਾਤ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਝ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਦਾਦੂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੁੱਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੁਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਕਾਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਦੁਆਰੇ ਤੀਜੇ ਬੁੱਧ ਬਵਿਕਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੜੋ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਪੜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜ ਸਿਮਰੋ।

एक सिख गुरु का इतिहास कहने भी उन्हें दूर दूर इलाके च घूम के प्रचार करना ते दसवंद कट्ठा करना। मसंद सी दसवंद लिया के गुरु नूं भेंट करदे सी। अज भी बहुत सिख ने जिन्हां दी यह सेवा है, भाईओ संगत का दसवंद कट्ठा करके गुरु घर लाउंदे। वह गुरु का सिख मसंद, गुरु अर्जन देव महाराज का सिख है, दसवंद कट्ठा करता। लाहौर के इलाके चों दसवंद कट्ठा किया, चल पिया श्री अमृतसर साहब वल। रस्ते विच एक जंगल पैंदा है, उस जंगल विच शिखर दुपहरे लुटेरे पै जांदे ने, लुट लैंदे ने। लोग दुपहरे राती उत्थों लंघदे नहीं डरदे, पर गुरु का सिख गुरु गुरु जपदियों रस्ते तुर पिया। जदों गुरु गुरु जपदियों रस्ते चों लंघिया, मोहरे वह बन्ना ताड़वियां जिहड़ा लुट्टण वाला सी सामने आ गया। उस ताड़वीए ने हथ में तिखा दातर है, एकदम झाड़ियां चो निकलिया, उन्हें दात गलते रख लिया पिछों। जो कुछ कोल है वे कढ दे, नहीं ते तेरा गल बढ़ दांगा। उस वक्त उस सिख ने अपने खिस्से विच हथ पाया, पंज चार दमड़े पैसे कढ के मोहरे करते, लै भाई आ पैसे ने। वो दात गलते रखण वाले ने, दातर रखण वाले ने तली तो पैसे चुक ले ते नाल उह पुछदे, उह ताड़वीए डाकू दा नाम इतिहास विच लिखिया लखू ताड़वीए। उहदे नाम तो लोग डरदे सी। जदों ने तली तो दो चार पैसे चुक ले, फिर वह दो पुछदे जवान तो बोल के, भाई थैली जिहड़ी हथ च फड़ी इहदे विच की है? तो सिख ने कहा यह गुरु का दसवंद है। कहना दसवंद है? कहणगा हां, संगत की माया है। गुरु का दसवंद संगत का कट्ठा किया हुआ है गुरु अर्जन देव महाराज। तो वह ताड़वीए कहने भी इत्थे रख। तो गुरु के सिख ने कहा यह नहीं मैं देना। कहना मैं तेरा गल बढ़ दांगा। कहणगा बढ़ दे, मैनू वढ़न तो बाद मारन तो बाद ले लेंगा, मैनू कोई दुख नहीं। ये पैसे मैं तेनू नहीं दे सकता, यह गुरु का दसवंद है, संगत की माया है। जेड़े आ पैसे मैं खीसे चो कढ के दिते ने मेरे ने, तू मैनू कह जे जान बचाउणी है जो कुछ कोल है कढ दे। मैं अपने कोलों कढ दिता है भाई, मैं जान बचाउणी चाहुंदा है, जो मेरा सी मैं कढ के तली ते रखता है, दो चार पैसे मेरे ने, पर आ जिहड़ी थैली है संगत की माया, यह गुरु की माया है, यह मैं तेनू नहीं दे सकता। ताड़वीए ने कहा जे मैं तेनू वढ दिता, कहणगा हाँ वढ के तू लै सकदा, फिर मैं फारक है, तू मैनू वढ के लै सकने, पर जिउंदिया जी मैं गुरु की माया तेनू नहीं देनी। वह ताड़वीए बड़ा हैरान होया वी बंदा जान भी बचाउणा चाहुंदा है, खीसे चों पैसे कढ के भी दे रहा है, पर हथ वाली थैली नहीं दे रहे। इन्नी गल कहिंदा वी माया मेरी नहीं है, यह तो गुरु की माया है, ये मैं अपनी जान बचाउण लई नहीं दे सकता। तो हुण ताड़वीए पता की बोले, कहना जे तेरी गल सच होई कि यह माया वाकई तेरे गुरु की है, फिर तो दवांगा तेनू छड। ते जे ये माया तेरी होई, तेरे गुरु के सामने तेनू वढ़ दंगा। तेनू पता है मैनू लोग लखू ताड़वीए कहिंदे ने, मेरे ना तो दुनिया डरती है। उन्हें कहा भी जो मर्जी ते तो डरदा होए, पर मैं सच बोल रहा। लखू ताड़वीए कहिंदा चल फिर तेरा गुरु वेखीए किहड़े। वह जिहड़े गुरु की खातर तू गल वढ़ाउण लई तैयार है, वह गुरु के दर्शन तो कराओ। गुरु किहड़ा कुछ है? जिस गुरु की खातर तू मरन लई तैयार है, वह गुरु के दर्शन कर। लखू ताड़वीए ने कहा मेरा गुरु मैनू सिखाउंदा है, मैं तां मरन लई तैयार है, क्योंकि जिस गुरु को मैं तेनू लेके चलने, उस गुरु ने पाठ पढ़ाया, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। लखू ताड़वीए कहिंदा चल फिर जिस गुरु ले मरन लई तैयार हाँ, मैं वो गुरु नू वेखा, उहदे दर्शन कर। पर जे तू झूठ बोलिया, तेरे गुरु के सामने मैं तेन वढ़ दें। लखू ताड़वीए दातर फड़िया नाल तुर पिया, दात हथ विच पकड़िया, भयानक रूप है, चल पिया जंगल तो श्री अमृतसर साहब। जदों श्री अमृतसर साहब पहुंचा, जिथे दुख भंजनी वेर दे कोल खब्बे पासे एक थड़ा बनिया, जदों तुसी दरबार साहब जाओ दर्शन करो, वह थड़े का नाम है 68 तीर्थ। उत्थे गुरु का इतिहास भी लिखा हुआ है।
इतिहास कहिंदा उह जगह ते धन गुरु अर्जन देव महाराज विराजमान ने, उह थड़े ते बह के गुरु अर्जन देव महाराज सेवा करा रहे ने। इन्ने नूं उह गुरु दा मसंद सिख लक्कू धाड़वीए नूं लैके पहुंच गया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे चरणां च माया दी थैली रखी, मत्था टेक के कहा महाराज आ संगत दा इकट्ठा कीता दसवंद है, प्रवान करो। श्री गुरु अर्जन देव महाराज उस सिख नूं पुछदे, कहिंदे भाई आ कौन है नाल? संगत वेखण लग पई हथ च दात चुकया होया बंदा, बड़ा भयानक लगता है। तो गुरु अर्जन देव महाराज पुछदे भाई ये कौन है नाल? ते सिख ने पता की कहा, कहना जी मैनू नहीं पता कौन है, मेरा काम सी तुहाडे तक लियाउणा, मैनू नहीं पता ये कौन है। एक चीज होर याद विच रखियो, गुरसिख कदे किसी नूं चोर नहीं कहिंदा। साडी आदत बन गई, असी हरेक बंदे नूं कहिंदे वह भी चोर है, वह भी चोर है। दूजियां वल उंगल करदे अपने वल ही कदे सोचदे आपां किन्ने सच्चे। माफ करियो, जिन्नी देर दूजियां दे गिरीवान वल वेखोगे बंदा अपने आप की पहचान नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फरमान, वह भलिया दूजियां वल ना वेख, अपने अंदर झात मारो। तू कित्थे खलोता है? किसी नूं माड़ा कहण तों पहलां अपने कर्म भी सोच लिया कर। असी दूजे नूं चोर कहण दा सर्टिफिकेट मिंट च दे देईदा, अपने बारे नहीं सोचदे। कर साहिब की बाणी का फरमान है, जे तैनूं बहुत अकल है किसी के औगण वेखण तों पहलां अपने गिरीवान च झात मार, तू कित्थे खड़ा। शब्द पढ़ो तुहानूं याद है, फरीदा जे तू अकल लतीफ पढ़ो, फरीदा जे तू अकल लतीफ, लतीफ का अर्थ हुंदा बहुत बुद्धिमान बंदा। फरीदा जे तू

पत्थर तार। जदों उन्हें अपने औकन मन ले, गुरु अर्जन देव महाराज ने बांह पकड़ ली। बांह पकड़ दिया सहार श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने नजर मिलाई। बस नजर मिलद एक कृपा हो गई लखू ताड़वी, उहदे सारे औगण गुरु ने खिंच लए, अपने वाले गुण गुरु ने उहदे विच भर दित्ते। इतिहास कहिंदा है जिहनूं लोक ताड़वी आ डकैत चोर लुटखो वाला कहिंदे सी, ऐसी गुरु की कृपा होई उहनूं कमलिया संत कहिण लग पए। तुसीं एक साखी सुनी होएगी, बहुत मकबूल है इतिहास विच, श्री गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर अरदास करदे ने बुद्धू दे आवे पक्के। एक बार बंदा खलो के कहिंदा बुद्धू दे आवे कच्चे, ते आवे कच्चे रह गए। पता क्यों? ओ कहण वाला ओही ओ कमलिया सी जिहनूं लोक डकैत कहिंदे सी, उहदे बोलां च रब वस गया, उहदे कहण नाल आवे कच्चे रह गए। प्रभु जी वसै साधकी रसना। श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने कोई नजर मिलाई, एक बार कहा लखू रब दा नाम जपया कर, सतनाम श्री वाहिगुरु जप मन, सतनाम सदा सतनाम। महाराज की होएगा? कहिंदे हलत पलत मुखुजल होई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। ओ लखू ताड़विया कमलिया साध संत बन गया। साध संगत है, दर्शन देखती सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। की इदां हो जांदा? एक प्रमाण पढ़ो मन च। साहब कहिंदे पूरा गुर अखे हो जा का मंत्र पढ़ो, तुहानू याद रहे। पूरा गुर अखे हो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पिखे हुए संत। जदों गुरु ने अमृत दृष्टि पाई, इको दृष्टि नाल संत बना दिता। क्यों बनाया भाई? उहदा इको ही कारण है, उहने अपने औगण मन लै। असी औगण नहीं मनते, बस इत्थे गुरु खड़े। सिखा जिदन मन लेंगा कि मेरी गलती है, जिदन मन लेंगा कि मैं पाप किए ने, ये नहीं कि गुरु नूं पता नहीं। गुरु नूं सब कुछ पता है, पर गुरु इस सिक्ष्या च खड़ा है, तू आप मन अपनी जुबान तो कि मेरे विच औगण ने, फिर गुरु मिल लेगा। एक बार पढ़ो सारे,

अखो सतनाम श्री समा समाप्त हो गया है, पर पांच सत मिनट में तुहाडे लैणे ध्यान नाल सुन। ये जरूरी नोट करियो, आपां सारे स्कूलों में पढ़े हैं, तुहाडे बच्चे भी पढ़ते हैं। जिहड़ा बच्चा स्कूल तो घर आके होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है? फेल। ताइयों आपां कहिंदे बेटे होमवर्क करो, ट्यूशन रखो, दो दो तीन तीन ट्यूशनां रखियां सबजैक्टां ने। जिहड़ा बच्चा स्कूलों आके घर विच होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट फेल। ते याद रखियो, आपां अरदास करके जे घर जाके आपां नाम ना जपिया रिजल्ट अपना भी फेल है, तुहाडा भी ते मेरा भी। जे आपां घर जाके वाहिगुरु नां ना जपिया रिजल्ट, तुहाडा भी फेल ते मेरा भी फेल। जे आपां गुरु की बाणी ना पढ़ी अपना रिजल्ट फेल होना है। हुण वेखियो तुसीं इन्हां महीनियां च रिजल्ट बच्चियां दे निकलदे, जिन्हें पूरा साल पढ़िया उहदे नंबर भी चंगे आउंदे। भाई जिन्हें पढ़ाई नहीं कीती उहदी कोई डिवीजन नहीं। इह गुरु दा दर है। इत्थों आपां होमवर्क लैके जाणा है। होमवर्क किहने दित्ता है? श्री गुरु रामदास महाराज ने। की दित्ता है? कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो गुर सतगुर का जो, नॉट गुर सिख, सिख जिन्हें सीखना शुरू कर दिता, जिन्हें गुरसिख बन दे रस्ते ते तुर पे, भावें अजे अमृत नहीं छकिया, सिख है भाई, वह सीखन लग पे। पढ़ो वह की करे फिर? की कला गुरुद्वारे मत्था टेके? नहीं। पढ़ो गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर। एदा मतलब तुहानू याद है, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उद्दम करे पल के पर पाती।

आया होमवर्क। उठदियां बहिंदियां वाहिगुरु कहणे, जे वाहिगुरु ना कहा जदों गोडियां ने जवाब देना फिर हाए हाए कहने, होर नहीं होना फिर कोई। जे वाहिगुरु कहण लग पे फिर मैनू नहीं उम्मीद, गोडियां ने जवाब ही नहीं देना, तुसीं हाए नहीं कहोगे कदे, फिर वाहिगुरु कहोगे। आखो वाहिगुरु, आखो वाहिगुरु, वाहिगुरु। दिस इज योर होमवर्क, ये तुहाडा होमवर्क है कि जदों सवेरे नींद चों जाग खुले, चार बजे, पांच बजे, छे बजे जदों उठते हो, उठदियां सार तुहाडा फर्स्ट वर्क एवरी डे ये होना चाहिए, अपने मंजे बैड ते बह के दो चार मिनट कह लिया करो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कह लोगे भाई, जप लोगे सवेरे, सवेरे जप लोगे, जिन्हें सुनते जेडे लाइव ते सुनते हो भी जप लो भाई, मैनू पता है लाइव ते भी बहुत सुन रहे, तुसी जप लोगे सवेरे, जदों नींद चो जहाग खुले वाहिगुरु कहने, ये तां कहे होने, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठर नाम त्यावे, तां त्या होने जे सवेरे उठ के वट्सअप ना चलावे, ते जे चलावे वट्सअप, जे सवेरे उठ के कलेस बुक देखनी है फिर नहीं वाहिगुरु कहे होने, मोबाइल रखियो दूर, जदों सवेरे नींद चो जहाग खुले मोबाइल बाद में चकने, पहला दो चार मिनट कह लेना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ठीक है भाई, कह लोगे हथ खड़े करके जकारा छोड़ो, सिर वाहिगुरु कहोंगे आप, वाह वाह बोले।

0: to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हों सारिया ही दुखा का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करते हैं सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृशंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी चारपट छंत प्रसाद अमृत कर में अमृत धर्म अखल जोगे अचल भोगे अचल राज अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भूता सर्वंग जूता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देवा पेव आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व

चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दान चत्र चक्र जान चत्र चक्र वर्ति चत्र चक्र प्रति चत्र चक्र पाल चत्र चक्र काल चत्र चक्र पास चत्र चक्र वास चत्र चक्र मान चत्र चक्र दान चाचरी छंद न सत्र।

भूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा के धर्म तुझा के अशोक भरण के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपो अनुप है के आदा देव है के आपा पेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोज

के सर्वत्र मन के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं काली में के परमं फही में के आकल आला में के साहेब कला में के उसनल वजू है तमामल रजू है हमेशल सलाम है।

पंतर मुक्त विभूत भार भूत प्रभा है सुजोत सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूप अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाध अगंज अगाध सुभंग सर्वभाग्य सो सर्व

विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशा से नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी तरकाल।

जिस बख्शे सो जन पावे कह नानक सच सो है प्रपाय उतरे सगल विसूरे दुख रो संताप उतरे।

श्याम कहे सतमर स्वामी समय अच्छा साच रहे सब को ससमावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लया प्रस जाए नानका मुखंत्र पाए।

वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुपठाणी अमल किया चारे वेद हुए सियार पड़े गुणे तू चार विचार पाव भूतकानी सदाई तो नानक मुखंत्र पाए पौड़ी सतगुरु बिट्ठो वारिया।

अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय त्रिपाण महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत

यानी शरीरक मानसिक वाचक, जो मैं मन नाल सोचिया चंगा या माड़ा मानसिक करम, जो मैं जबान नाल बोलिया चंगा या माड़ा वाचक करम, जो मैं हथां पैरां दे नाल कीता चंगा ते माड़ा शरीरक करम। इन्हां तिन्नां ही कर्मां दे जोड़ तों उपजदे ने सुख ते दुख। दुख है तेरे कोल, किसे नूं भी दोषी ठहराण दी लोड़ नहीं। तेरे शरीरक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे वाचक कर्म ठीक नहीं आउणगे, तेरे मानसिक कर्म ठीक नहीं आउणगे। कर्म ही ते बीज सन। ते मैं फिर अर्ज करां, मनुख हर बंदा जैसे बीज दे फल नहीं देख सकता, लेकिन विज्ञानक देख सकता है, साइंटिस्ट वेख सकता है, अज भी वेख सकता है। ये बीज ठीक नहीं है, इहदे चों फल ठीक नहीं निकलेगा, इहदे चों फुल चंगे नहीं निकलणगे। बीज दे च फल वेखण दे सफल होया साइंटिस्ट, कर्म दे च दुख सुख दा फल वेखण दे सफल होया संत। बीजां दी छटाई कीती साइंटिस्ट ने, कर्मां दी छटाई कीती संत ने, गुरु ने, पीर पैगंबर ने। इन्हां कर्मां नूं जिंदगी तो एक पासे कर दो, नहीं तो दुख ही दुख होणगे। और इन्हां कर्मां नूं झोली दे च पा लो जे सुख तू चाहना। ਇਹ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਸੇ ਬੀਜ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਟਲ, ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਟਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमजोर ने, उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, उदे नेचल होने का सबूत कितों मिलता है, उदा नियम नेचल है। भारत का जो राष्ट्रीय विधान है ना, जिसके मुताबिक मुल्क नु चलाया जाता कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज्यादा दफा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, 150 तो भी वध। जब जब देखा गया विधान, ये मुताबक देश नु चलाना औखा है, तब्दीली ये मुताबक देश नु चलाना औखा है, फिर तब्दीली। इसका मतलब 150 दफा पहले हुई है। जी पहले उस विधान नु सही मन के देश नु चलाया जाता रहा, तो साल दो साल बाद दस साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे होए ये भी कोई सही है, इहदे च भी संशोधन करना पे, और कितनी दफा करना पे, 150 दफा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान दे संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यह मतलब वो कोल भुल्लां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने, उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है। फिर उहनूं भी ठीक करना पैंदा है, उन्हों भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्हों भी सोचना पैंदा है कि इहदे मुताबिक जगत नूं चलाना औखा है, और इहदे मुताबिक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान विच जो है तब्दीली करा, नहीं, सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उहदा नियम सच्चा है, उहदा दरबार अटल है, उहदे च कोई तरमीम नहीं, उहदे कोई संशोधन नहीं। कर्मां दी विचार आउंदी है, उसके दरबार विच किस ढंग नाल आउंदी है, ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुक्ते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी ते अपनी चाल नाल चलदी है, ते कल दी तरह मैं गुस्ताखी ना करां, क्योंकि पिछे जथियां ने कीर्तन भी करना हुंदा है, और महापुरखां दी इत्थे विचार आउंदियां ने, इतनी जो है प्रवान करनियां। दास ने अगे जाके 7:45 गुरुद्वारा सरी दे जो है हाजरी भरनी है, उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा उसनु उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारे दे इस ढंग के प्रश्न सन, ते ये प्रश्न अपने आप देच इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन ते मंगदा है इनू निखेड़न लई। तो एक दो दिन दे ची दास ने निखेड़ा करना है, भावें इस संबंध च गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने,

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरबाणी विचार दी सेवा विच अपना योगदान पा रहे हन ब्लूबेरी दे उत्पादक अते प्रोसेसर लाली फार्म्स स्वर्गवासी रजिंदर सिंह लाली जी दी पवित्र याद विच। इस पवित्र सेवा विच सहयोग देण लई असीं लाली फार्म्स दे दिलों धन्नवादी हां।
4: स्नाइपर

बेडर तोरा नीला चोला छे फुट जो साला शिके हाथ च तीर ते वांग गात्रे रखिया।

0: ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂਪ ਮੀਨੰਗ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, Guru Hargobind Sahib di 6vi santan ne. 6vi santan ta shabd varte hai. Hazur de aagman to pehla ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪਕੜਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਚੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਜ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ।
3: ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ। ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਗ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਸੋਗ। ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਸੋਗ। ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੋਗ। ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही, तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग देच होके आउंदे ने, सोग देच पछतावे आउंदे ने, सोग देच साड़े आउंदे ने, सोग देच जलन आउंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस देच मनुख दी सोचन शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन देच रोग होवन, मन देच सोग होवन, तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक देच जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है। ये नरक देच जी रहे है। नरक ही क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक देच जी रहे है। तन देच रोग ने, मन देच सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे हैं, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। आज तक मानसिक सोग नू दूर करन वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नू मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे है, चल रहे है, चल रहे है, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया है। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है, मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नू सोग कहंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है होके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा। सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है। सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देता है और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देता है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफलां विच नहीं बैठन देता, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देता, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देता, सोग संकोच के रख देता है, सोग सिकोड़ के रख देता है, सोग निचोड़ के रख देता है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है। और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देता है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देता है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने। क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इसके अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलते। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसकी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ये इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर का हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चों। ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो वह इच्छा तो कई दफा पूरी हो जाती है, तो जे ना पूरी होवे तां वी एक रेखा छोड़ जाती है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहिंदियां ने जिवें नदी बह रही है। बावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है, जो पी लिया है पानी उही हिस्सा बने है, बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, इस आसा रूपी नदी दे च पानी केड़ा है? संकल्प। जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओ उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी। इस आसा रूपी नदी दे च अगर संकल्प पानी है तो त्रंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ये नदी गहरी कितनी है, इहदा पाट कितना गहरा है, ये चौड़ी कितनी है, ये गहरी कितनी है। तो ये राजयोगी, ये महान संत, मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ये महायोगी इंज कह रहा है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नाप तोल च नहीं आई। कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इदिया जड़ा नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ये बेचैन क्यों है, तृष्णालु है। ये तृष्णालु क्यों है, इहदे अंदर संकल्प ने। संकल्प क्यों ने, इहदे अंदर इच्छावां ने। इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहते ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लीए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है, कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे, ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने। ये किन्नी मील लंबी है, इहदा पाट किन्ना चौड़ा है, ये गहरी कितनी है। इक्को ही नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर दिता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं हुईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुईयां, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे, मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी, इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले, किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनू मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
4: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ ਯੂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ।
5: फैमिली केयर फार्मेसी
6: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
5: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
6: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
5: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
6: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
7: 3 locations टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक,
5: जा कॉल किरण @604-581-1900।
8: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370 604-325-8370
9: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
10: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਾਲੀ ਫਾਰਮਸ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 1550 ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਵਿਊ ਸੀਡਰ, ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਵਿਊ ਸੀਡਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
11: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ। BC ਰੈਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 88 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ।
12: Family Care Pharmacy.
13: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1।
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
13: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿੰਗਸ, ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
12: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
13: ਫ੍ਰੀ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
7: 3 locations ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ,
12: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900।
14: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.